0: Минута радіо Фічі на радіо Чепельдук.
1: घर घर की कहानी आप तक लाने वाले हैं जूला क्रीम जो उपलब्ध है 550 रतुमरा रोड के विख्यात सुपर ड्रग फार्मेसी और आपकी नजदीकी फार्मेसी में।
0: Это была минутка радио Фиджи на радио Чепельдук.
2: If we are here not to do what you and I wanna do and go forever crazy with it, why the hell we are even here?